मिक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: किए।
1: अरे मेरी जान कुछ भी कीजिए पर दिल हमी को दीजिए। और आप सुने लता मंगेशकर और मुकेश जी से फिल्म छलिया का गीत उजाला रेडियो पर।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, लता जी की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म का नाम अभिमान।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुने, और फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो तो।

मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीवन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, श्रद्धा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सीदोरे जो वैखदेसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीवन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, श्रद्धा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फंजी फंतोत अख्तूर ओला जोइट के मुर्दालय फ्रेतरूस कसरात 91 आम्स्टर्डम जोइट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखास्तांद फिर यूर किए जाएंगे। वैस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 49

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वियन जीवंतख यार और एल्फी का पति किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मिरांडा लिंसी शकीता और राम के ससुर जयदा जेनाइरो रोशन और नाइलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियस जिकनहाउस में हो गई है। हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल के आयु में त्वियन जीवन तखियार और पत्नी एल्फी का पति किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मिरांडा लिंसी शकीता और राम के ससुर जयदा जेनाइरो रोशन और नाइलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के शाम में 6 बजे से 7 बजे तक वोस्टाफन फंसेस्टो जेफनूर उत्फर्ट सेंट्रम दालवाई के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्रीव नंबर 7 उत्रेख्त ओवरफेक्ट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्तांद 4 यूर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम दालवेक फ्लोरिडा ड्रीव नंबर 7 उत्रेख्त ओवरफेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसिर के दुख में शामिल है।

लड़कन के तरफ से स्वर्गीय आजा स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसिर की याद में 72 साल के आयु में बीते हुए बीफे इनकर मृत्यु हो गई है। तो इन्हें के याद में प्रोग्राम में अगला गीत आप सुनेंगे जो पेश है।

और सुनने वालों, यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। एक गीत होंगे इसमें किशोर कुमार जी की आवाज में, और ये गीत पेश है हौतन से परिवार महादेव मिसिर, पत्नी एल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति केशन विकास अमरेश और करिश्मा की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा लिंसी शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर

0: जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। गीत आप जो सुने तो पेश की गई है हौतन से, परिवार महादेव मिसीर, पत्नी एल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति, लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा की तरफ से स्वर्गीय पिता, मिरांडा, लिंसे, शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर, जायदा, जनायरो रोशन और नायलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में बीते हुए बीफे इनकर मृत्यु हो गई है, तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। और यहीं तक आप सुने आज का सोख प्रोग्राम यादें।
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।

Oeh, Coffee Chime Middag Show. Welkom allemaal. Aatje Somwaar, Satratari Gezin. Or Holland is mee. Voor Noord-Nederland mee. School Shurhoga hai. Or de rest van Nederland. Volg nog. Welkom. Ujala Radio Gezin, wie het horen mee, hamnali malahe aanske headlines van vandaag. Zerusulina. और थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में भी आनंद चंद्रिका सिंह. आज बारिश हो रहे हैं या बारिश हुए हैं दुशिया छाता वाता लेके चली गए जवान.

देवेंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में आपने सुने कि हमार मशीनिया डॉबल्स खवावे। त्रिनिदाद में हमने डॉबल्स चिकना है। आई लव द वे यू वॉक, आई लव द वे यू टॉक। उजाला रेडियो है।

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer langzamerijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 6 kilometer file door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: किसी और सर्दी की बात थी
3: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी
2: हाँ पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है
3: एक काम करें जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी तुम्हारी शॉल कहाँ है
2: भूल गई ना ना
3: तुम नहीं बदलोगी

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सोनू निगम एंड सरिका कपूर से आप सुने, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। तुमसे अच्छा कौन है, और ये उजाला रेडियो है।

जिंदगी बन गए हो तुम। फिल्म कसूर और गीत के गाने वाले अलका याग्निक और उदित नारायण जी।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

Oetjala's Coffee Chai Middag Show. Welkom allemaal. Aatje Somwaar, Satratari Gezin. Or Hollandees mee. Voor Noord-Nederland mee. School Shur Ho Gaya Hai. Or de rest van Nederland. Volg nog. Welkom. Oetjala Radio Gezin. Wie het horen ermee? Hamnaal in welke aanske headlines van vandaag. Zerusulina. और थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में भी आनंद चंद्रिका सिंह. आज बारिश हो रहे हैं या बारिश हुए हैं, छाता वाता लेके चली गए जवान.

देवेंद्र सिंह शिवनाथ के आवाज में आपने सुने कि हमार मशीनिया डबल्स खवावे। त्रिनिदाद में हमने डबल्स चिकना है। आई लव द वे यू वॉक, आई लव द वे यू टॉक। उजाला रेडियो है।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सीदोरे जो वैखदेसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फंजी फंतोत अख्तूर ओला जोइत के मुर्दालय फ्रेतरूस कसरात 91 आम्स्टर्डम जोइत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखास्तांद फिर यूर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

0: तेरा था।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, अम्स्टरडम से लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नई खंतखियार और लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलोविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतो के ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा पर नाना और स्वर्गीय श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति दिमन जोयत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अम्स्टरडम से लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नई खंतखियार और स्वर्गीय पत्नी श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलोविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतो के ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, दिमन जोयत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 बजे वोंसडाग आंस्टांड इन उर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुरजोरखिंग समस्त परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: खत्म हुए
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वियन जीवन तक यार और एल्फी का पति किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मिरांडा लिंसी शकीता और राम के ससुर जयदा जेनाइरो रोशन और नाइलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियस जिकनहाउस में हो गई है। हौतन से परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वियन जीवन तक यार और पत्नी एल्फी का पति किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मिरांडा लिंसी शकीता और राम के ससुर जयदा जेनाइरो रोशन और नाइलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बुध के शाम में 6 बजे से 7 बजे तक वोंसदखाफंत फन जेस्टो जेफनूर उत्फार्ट सेंट्रम दालवैक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्रेख्त ओवरवेख्त में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्टांद 4 यूर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्रेख्त ओवरवेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फ्रजोरखिंग समस्त परिवार महादेव मिसिर के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए, अम्स्टरडम से लड़कन बंसी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 85 साल की आयु में फैफन तख्तियार और स्वर्गीय पति श्री हरिदेव बंसी की विधवा लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुशल, मीना शकौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतों और दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल के मृत्यु अम्स्टरडम जोयतोस में हो गई है। परामारीबो में पहले मुंदरवेह के निवासी थी। अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को

अख्तियार और स्वर्गीय पति श्री हरिदेव बंसी के विधवा, लड़कन सीता शिवराज, स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू, इंदिरा कुशल, मीना शकौरी, स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां, दो पतो, दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास, 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी, अम्स्टर्डम ज़ुइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो मिंदरवेख के निवासी जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक, डोंडर दखांस्तांद फन 7 tot 8 uur, uitvaartcentrum Westgaarde के मुर्दालय, ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार दिन में 12 बजे फ्रेडा खानस्तांद 12 uur किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रिमाटोरियम, ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फ्रजोरखिंग समस्त परिवार बंसी और परिवार रामफल के दुख में शामिल है।

0: संदेश हुआ।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडाफन फन क्वर्ट ओवर ज़ेफ़न टॉट क्वर्ट ओवर 8 वेस्टगार्डन क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेस्टगार्डन क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

और सुनने वालों, यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। एक गीत होंगे इसमें किशोर कुमार जी की आवाज में, और ये गीत पेश है हौतन से परिवार महादेव मिसिर, पत्नी एल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति केशन विकास अमरेश और करिश्मा की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा लिंसी शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर, लड़कन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसिर की याद में 72 साल के आयु में बीते हुए बीफे इनकर मृत्यु हो गई है। तो इन्हीं के याद में प्रोग्राम में अगला गीत आप सुनेंगे जो पेश है।

0: जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं और कोई जाना नहीं। गीत आप जो सुने तो पेश की गई है हौतन से, परिवार महादेव मिसीर, पत्नी एल्फी के तरफ से स्वर्गीय पति, लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के तरफ से स्वर्गीय पिता, मिरांडा, लिंसे, शकीता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर, जायदा, जनाइरो, रोशन और नाइलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में बीते हुए बीफे इनकर मृत्यु हो गई है, तो इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। और यहीं तक आप सुने आज का शोक प्रोग्राम यादें।
1: You are just perfect.

तुम मिले तो दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, मुझे जीने को और क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी, उजाला रेडियो पर।

मैंने सोचा ना था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने।

सोनू निगम और अलका याग्निक, इन दोनों से आप गीत को सुने। फिल्म का नाम रेफ्यूजी। उजाला रेडियो पर इसी फिल्म से इन्हीं दोनों की आवाजों में एक और गीत पेश है।

मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ। अलका याग्निक एंड सोनू निगम, इन दोनों से गीत को आप सुने।

ये उजाला रेडियो है और यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो आमसदाम से जो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं अपने संगीत के खजाने से, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी, इतना मुझे यकीन है। आप बेसब्री से इस पल को इंतज़ार करते होंगे। शुरू करती हूँ इस पैगाम से। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो फिर अपने खुशी के फिक्र मत करना। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद।

नाते नबी पेश था, आवाजें थी अब्दुल रहमान और साथियों का। इसे रूहानियत अंदाज में सुनवाते हैं भजन, तर्ज है, मोरे शाम पल पल मोरे मुख से निकले निस्दिन तेरो नाम।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने कई शैलियों में गीत संगीत पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने गजलें चुने हैं। उम्मीद है कि आप इस हिस्से के प्रोग्राम में लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी ना बनाया, अपना भी ना बनाया और किसी का होने भी ना दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया।

दिल छू लेने वाली गज़ल पेश थी महान गज़ल गायिका बेगम अख्तर की आवाज़ में। कलाम था शायर शकील बडायूनी का। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोर व शोर से लहरें बहता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बयां करते जो हाल दिल तो यूं मुस्कुरा देते, अब वही रो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझ को खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल पंकज उड़हास की आवाज में। कलाम था शायर शकील बड़ायूनी का। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही तो होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब भी रोते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान गायक केएल सहगल की आवाज़ में। उनके जैसा तो कोई हमको दोबारा ना मिला, हम भंवर में ही रहे, हम भंवर में ही रहे, हमको किनारा ना मिला। डर गए जब भी वहशते हालात से हम, मनाना चाहा था मगर कोई सहारा ना मिला। चांदनी रात में तारों की आसमान पे हमें उनकी आँखों की तरह कोई सितारा ना मिला। रात भर क्यों उनकी हंसी उनकी हाइयाँ याद आई, जिनकी बाहों में जैयद कोई सहारा ना मिला।

अनमोल नगमा पेश था तलत महमूद की मखमली आवाज़ में। मौसिकार शिवम की मौसिकी थी, नगमकार था शायर नक्शब। अब लीजिए पेश है लकी अली और सुनिधि चौहान की गाए हुए ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। मौसिकार M.M. क्रीम की मौसिकी थी, कलाम था शायर निदा फासली का। अगला दो गाना सुनवाएंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

कमाल का दो गाना पेश था। संगीत से सवार थे शंकर जयकिशन बोल था शायर शैलेंद्र का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है। तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। ऐसे में कोई किसी का दीवाना ना बने।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था से रामचंद्र की मौसिकी थी। दर्श को लिखने वाले थे पीएल संतोषी। अब लीजिए पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

अनमोल नगमा पेश था, रवि की मौसिकी थी और साहिर लुधियानवी का बोल था। ऐसी हसीन चांदनी पहले पहले कभी न थी, सुनाने को जा रहा है मीठी आवाज में किशोर कुमार।

मुंड संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से आदाब अर्श और नमस्कार। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने फिल्म मुगले आजम के बारे में बयान किया था। मैंने बतलाई थी कि सलीम जंग के मैदान से जब वापस आते हैं तो खुशी के मौके पर दावत दिया जाता है। दावत के माहौल में सलीम एक मूर्ति को बेनकाब करता है, लेकिन वो मूर्ति नहीं, एक जीती जागती लड़की थी जिसे संग तराशी मूरत बनाकर दरबार में पेश किया था। मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में शहंशाह अकबर की आवाज़ में डायलॉग सुनाई थी। आपने सुना था कि अकबर को जब एहसास हुआ कि मूर्ति नहीं एक जीती जागती लड़की थी तो उन्होंने संग तराशी को दाद दिया, और जब उन्होंने लड़की से सवाल किया कि वो कौन है तो लड़की ने अदब से अकबर को जवाब देती है कि वो सिर्फ एक कनीज स्लाफेन है। अकबर कनीज की खूबसूरती को तारीफ करता है और उसे अनारकली के खिताब देता है। सलीम को अनारकली से मोहब्बत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से छुप कर मिलते हैं। सलीम और अनारकली की रोमानी भरी बेपनाह मोहब्बत और ना मिलने की तड़प कई फिल्मों में बार बार दोहराई गई है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इसी फिल्म मुगले आजम से एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं जिसका रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन फिल्म में पर्दे पर नहीं सुनाई गई, यानी इस गीत को नहीं फिल्माया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत जो लता मंगेशकर ने गाई थी, आइए सुनें।

इश्क सब दुनिया वाले फिल्म मोहले आजम का गीत आपने अभी लता मंगेशकर से सुना, दिल लुभाने वाले गीत है। इसी फिल्म में से हम आपको एक और गीत सुनाते हैं, एक खास भजन है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी है। कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे ये भजन सुनने के बाद।

मोहे पनघत पे नंदलाला। इस भजन को 5 दिन लगी थी फिल्माने में। इन 5 दिनों में एक अजनबी सारा दिन मोहन स्टूडियो में बिताते थे। बाद में आसिफ को एहसास हुआ था कि वो अजनबी कोई और नहीं, पाकिस्तान के वजीर आलम जुल्फिकार अली भुट्टू थे। अली भुट्टू ने बॉम्बे में उन दिनों के वर्ली होटल में ठहरे हुए थे। तो स्टूडियो में शूटिंग के दौरान पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आलम 5 दिन लगातार बिताए। किसी को एहसास नहीं था कि ये जुल्फिकार अली भुट्टू थे, लेकिन बाद में पता चला कि भुट्टू ने खास तौर पर मधुबाला के को देखने के लिए आते थे। मधुबाला की खूबसूरती के बारे में उन दिनों में बहुत चर्चा थी। शक थी कि भुट्टू मधुबाला के वास्ते 5 दिन तक मोहन स्टूडियो में दिन बिताते थे। इसी तरह मधुबाला की खूबसूरती पर उन दिनों के बहुत नौजवान दीवाने थे। इसमें से दिलीप कुमार भी एक थे। इस बारे में हम आगे चलकर और बातें करेंगे। इस फिल्म का एक और खास गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। फिल्म मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन में थे, खास तौर पर ये मंजर जिस पर यह गीत फिल्माया गया है। इस गीत के बारे में कहा गया कि जिस अंदाज से मधुबाला अपनी अदायगी पेश किया था, आंखों में वो जुनून, बेखौफ अपने प्यार के खातिर मरने की तैयार, दूसरे अदाकारों में नहीं देखे हैं।

छुप के आहे भरना था, जब प्यार क्या तो डरना क्या। ये प्यार मोहब्बत का बयां है जो मधुबाला और दिलीप कुमार से जुड़ी हुई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की बात ही अलग थी। दोनों में प्यार था, दोनों में 7 साल गहरी ताल्लुक थे। फिल्म मुगले आजम राजस्थान की रेगिस्तान में फिल्माया गया था। शहंशाह अकबर वारिस के लिए मिन्नत किया था। अकबर को सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में बेटा के लिए इबादत करना था। पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने अकबर के किरदार कर रहा था, आसिफ से कहा कि उन्होंने कड़ी धूप में नंगे पांव रेगिस्तान में चलकर सलीम चिश्ती के दरगाह जाएंगे मिन्नत करने के लिए। आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि शहंशाह अकबर को हाथी पर शान से सवारी करना है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर आसिफ को यकीन दिलाया कि रेगिस्तान के कड़ी धूप में नंगे पांव पैदल चलने से दर्शक को निहायत मुतासर होगा। पृथ्वीराज कपूर का बेटा शमी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म मुगले आजम बन रहा था तो उन्होंने कभी कभी अपने वालिद के साथ स्टूडियो जाते थे। शमी कपूर अपने वालिद के बारे में कहा था कि जब उन्होंने तैयार हो जाते थे अपने किरदार अदा करने को तो वालिद से शहंशाह अकबर में बदल जाते थे और अपने बेटे को भी नज़रअंदाज करते थे। इतना उन्होंने अपने किरदार में समा जाते थे। शमी कपूर ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में ये भी कहा कि रेगिस्तान में नंगे पांव चलने के सबब से उनके पांव में छाले पड़ गया था, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया था। पृथ्वीराज कपूर की फिल्मी सफ़र में मई महीने की कड़ी धूप बिना जूते के पैदल चलना फिल्माया गया मंजर हकीकत था। उसे अपने जौहर दिखाने की तहरीक था, चुनौती थी।

0: तरह पृथ्वीराज कपूर के किरदार रेगिस्तान में नंगे पांव चलना असली था, उसी तरह मधुबाला अनारकली के किरदार के कुछ हिस्से हकीकत थी। मधुबाला को जंजीर में जकड़ना, शाही महल की कैद खाने में डालना, वो जंजीरें नकली नहीं, असली थी। जंजीरों में लिपटी हुई गीत फिल्माना, मधुबाला की चेहरे से डर झलक रही थी। आसिफ मधुबाला की चेहरे से ये डर महसूस करना चाहता था। आसिफ को एहसास था कि मधुबाला को इस मंजर को लोहे की जंजीर में लिपटी बहुत तकलीफ होगी, पर उसे सिर्फ अपने फिल्म से वास्ता था। मधुबाला को दिल की बीमारी थी, दिलीप कुमार से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मौसिकार नौशाद ने कहा, मुझे ऐसा अंदाजा था कि दिलीप और मधुबाला की मोहब्बत है और लड़की की बहुत ख्वाहिश है दिलीप कुमार के साथ शादी की, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत कामयाब हो। मधुबाला कहती थी कि मोहब्बत में नाकाम होना भी मोहब्बत की कामयाबी है। अगर आपको मंजिल मिल गई तो मंजिल की तमन्ना तलाश खत्म हो जाएगी। 7 साल दोनों में गहरी ताल्लुक थी और मुगले आजम के दौरान दिलीप ने मधुबाला से रिश्ता तोड़ दिया था। इस फिल्म के इस मंजर में ये क्या दर्द थी, अनारकली के किरदार में समा जाना? सवाल यही था कि दिल का दर्द या दिलीप से बिछड़ने का दर्द। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1966 में पर्दे पर दिखाई गई। फिल्मी दुनिया की तारीख में मुगले आजम सबसे बेहतरीन फिल्म थी। उससे पहले थी फिल्म मदर इंडिया। फिल्म मदर इंडिया 1975 तक और 1976 तक लगातार सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। मदर इंडिया के रिकॉर्ड मुगले आजम 1976 में तोड़ा। 15 साल मुगले आजम तहलका मचाया था। फिल्म मुगले आजम के बाद था शोले, जिसके रिकॉर्ड आज भी फिल्मी दुनिया की तारीख में कायम है। मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन थी, पर 2004 में पूरी फिल्म रंगीन में बनी है और 2006 में पहली बार पाकिस्तान में पेश किया गया। इस फिल्म को पाकिस्तान में देखने के लिए कितने पाकिस्तानी बेताब थे। बहुत सुने थे फिल्म मुगले आजम के बारे में और 40 साल बाद मौका मिला था मुगले आजम देखने को।
1: ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताक है।
2: सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
1: दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तख लिया

0: तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है।
1: अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा।
0: और तुम कर भी क्या सकते थे?
1: एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्लेलाही को अपने जुल्म और मेरे सब की हद मुकर्रर करनी होगी।
0: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा?
0: कलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं।
1: यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं।
0: हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते।
1: तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है।
2: हिदायतकार आसिफ के मुखले आजम फिल्मी दुनिया के तारीख में बेहतरीन फिल्मों में गिनती है। इन फिल्म में 20 गाने रिकॉर्ड हुआ था। इन 20 गानों में से 10 गाने फिल्माया गया है। आसिफ का मकसद पूरा हुआ, अपना वादा जो आसिफ अवाम से किया उसे पूरा किया। मराठा मंदिर जिस थिएटर में मुगले आजम पहली बार पर्दे पर दिखाते, बाहर से सजाया गया था। टिकट हासिल करने के लिए आवाम कतार में कई रात गुजारे थे। पर्दे पर दिखाने से पहले मुगले आजम तहलका मचा दिया था। पेशकश हिदायतकार आसिफ का सपना पूरा हुआ। यहाँ तक हमने बॉम्बे का फिल्मी दुनिया के 30 बेहतरीन फिल्मों में से मुगले आजम के बारे में बयां की,
0: जो तुम्हारे फन को पेश करने का खूबसूरत सहारा बनी थी।
3: यानी
0: कल अनारकली से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी।
3: लेकिन जिल्ले इलाही,
0: क्या ये इनामात कम है?
3: बहुत है, उम्मीद से कहीं ज्यादा।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने छोटे रूप में फिल्म मुगले आजम के बारे में बयान किया। आपने सुना कि उस दौर में, मतलब सुनहरी दौर के पेशकश हिदायतकार कितने जज्बे के साथ फिल्म को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते थे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से अगला गीत। पहले एक शेर अर्ज है, तुम मेरे कोई इल्जाम ना ढूंढो, चाहा था तुम्हें यही इल्जाम बहुत है।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज में। हेमंत कुमार की मौसिकी थी, कलाम शायर गुलजार का था। जिंदगी, जिंदगी के उलझनों से फरार चाहिए मुझे, बचपन का, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए।

अनमोल नगमा पेश था। आवाजें थी महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार की, मौसीकी थी ओपी नैयर की। ये जुल्फों की बिखरी गदा क्या कहती है, सुनाने को जा रही है शोखी आवाज में आशा भोसले।

खूबसूरत अंदाज में पेश था यह गीत। संगीत से सवारे थे संगीतकार राजेश रोशन। अगला गीत पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। वो क्या सुनाने को जा रहा है, लीजिए पेश है।

सदाबहार सॉन्ग पेश था ओपन ईयर का संगीत रचना बोल था शायर लुधियानवी का। मुझे तुमसे बात करना पसंद है पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।

कमाल का नगमा पेश था राम लक्ष्मण की मौसिकी, नगमकार था नक्श लियालपुरी और रविंद्र रवेल। न जाने क्या कशिश है उसकी मधोश आंखों में, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर उस पे ही पड़ती है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की,

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की शहद भरी आवाज़ में। एक बार फिर इसी अंदाज में लीजिए पेश है ये नगमा।

फिल्म बहारे फिर भी आएंगी में से पेश था ये नगमा। मौसिकार ओपी नैयर की मौसिकी थी, नगमकार था शायर अनजान। एक लम्हे में एक मंजर गुजर जाता है, जब कोई अपना बेगाना नजर आता है। यूं तो आवाज आती है हर शीशे के टूटने की, पर कभी कभी बिना आवाज की भी सब कुछ टूट जाता है।

प्यार तो सपना है, निधा फाजली का कलाम और उषा खन्ना की मौसिकी में पेश था ये नगमा। अब आइए सुने उदित नारायण से अगला गीत।

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उदित नारायण की आवाज़ में पेश था ये गीत। अब आइए सुने अगला गीत।

फिल्म आविष्कार में से ये गीत पेश था। गाने वाले थे मन्ना डे, संगीत से संवारे थे कानू रॉय और तर्ज को लिखने वाले थे कपिल कुमार। आइए सुने अगला गीत।

वो दूसरा कोई नहीं, आवाज थी सुरेश वारकर की। अमीर कसल बश का लिखा तर था और ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली में से लिया है जो नेहती फैफन तख्तक में रिलीज हुआ था। आया था एक शख्स मेरे दर्द को बांटने, रुखसत हुआ तो अपने भी गम दे गया मुझे, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना।

0: ख्याल
1: रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा। रवि की मौसिकी थी, दर्श को लिखने वाले थे साहिर लुधियानवी। अब आइए सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते, तेरा कर्म ही तेरी विजय है।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, खादिमाते निशा।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर के हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.